0: शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहा
0: देभ्यो देवेभ्य स्वाहा
1: भूमाय भूमाय स्वाहा
0: रक्षितये स्वाहा
1: च्युतक्षित

ओम श्री साईराम। परम श्रद्धेय भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूं कि इस मंगल अवसर पर मैं भक्ति के कुछ स्वर पुष्प बाबा के चरणों में अर्पण कर रही हूं। सबसे पहले राग यमन में मैं मंगलदीप प्रज्वलित करती हूं। तू प्रेम का सागर बन जा, तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं, मैं मंगलदीप जलाऊं।

अब एक संत मीराबाई का भजन प्रस्तुत कर रही हूं। प्राणा ने विष का प्याला भेजा है मीरा के लिए और मीरा कहती है,

इस भगवद गीता के ज्ञान को भगवान ने सूर्य को, सूर्य ने वैवस्वता मनु को, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया था। उसी ज्ञान को कालांतर में भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को प्रदान किया। आरंभिक दृश्य में भगवान कृष्ण व अर्जुन संवाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति का कारण दिखाया है। भगवान बाबा ने हम सब बच्चों को 25 गीता के श्लोक बाल विकास के पाठ्यक्रम में दिए हैं। उन्हीं में से 5 श्लोकों पर आधारित 5 दृश्य दिखाने की परिकल्पना की गई है। ये है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां एक तरफ पांडव सेना है तो दूसरी तरफ कौरव सेना। महाभारत युद्ध आरंभ हो रहा है। एक ओर अर्जुन का शंखनाद, दूसरी ओर भीष्म पितामह का शंखनाद।

हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। मुझे जिन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है, जब तक मैं उन्हें भली भांति देख न लूं, तब तक रथ को खड़ा रखिए।

हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है। ओ माधव, मन भ्रमित हो रहा है।

गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सभी संबंधी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इन्हें कैसे मारूंगा? हे माधव, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। मैं इनको मारकर क्या करूंगा? वे मुझे मार दें तो भी हे मधुसूदन, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता।

अर्जुन, तुम्हें इस समय में यह मोह क्यों हो रहा है? यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग और कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, दुर्बलता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह भाव उचित नहीं है। इस परम तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।

0: विविधित स्वभाव के कारण मैं धर्म और अधर्म में भगवान निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि भ्रमित है, मोहित है, मैं क्या करूँ? मैं आपकी शरण हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ। आप मुझे उचित मार्ग बताएं, उचित मार्गदर्शन दें भगवान।
1: वत्स, तू शरणागत है, एक क्षत्रिय के लिए उचित धर्म क्या होना चाहिए वह मैं तुझे बताता हूँ। तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, तो युद्ध कर।

0: अरे बिच्छू पानी में डूब रहा है, मर जाएगा बेचारा। चलो इसे पानी से निकालकर किनारे पर रख देता हूँ।
1: आ आ आ
2: महाराज, हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि आप एक बिच्छू को हाथ में उठाकर किनारे पर ला रहे हैं। वह आपको काटता है और फिर पानी में गिर जाता है।
3: और हाँ, उसे आप जितनी बार निकालते हैं वह आपको डंक मार देता और आपकी चीख निकल जाती है और वह छूटकर फिर से नदी में गिर जाता है।
1: और नहीं तो क्या, कितनी तकलीफ हो रही है आपको, क्यों उठा रहे हैं आप उसे बार बार? गिर जाने दीजिए, छोड़िए, बह जाने दीजिए उस जहरीले जंतु को।
3: अरे महाराज, जब वह आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप उसे क्यों उठा रहे हो, जाने दो पानी में।
0: बहनों, वह तो जंतु है, उसका कर्म ही काटना है, वह परिणाम नहीं जानता। वह पानी में बह जाएगा यह उसे ज्ञात नहीं है। जब वह जीव अपना कर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं कैसे अपना कर्म छोड़ दूं? वह अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना। यह देखो, बिच्छू बाहर आ गया।
4: धन्य महाराज, आपने हमें बहुत बड़ी शिक्षा साधारण रूप में दे दी है। किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें अपना कर्म करते रहना है। आइए हम सब समूह में बोलें कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हम मानवता का धर्म नहीं छोड़ेंगे।

हे सम्मानित दर्शकों, हे ईश्वर के प्रिय भक्तों, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के वृहद संवाद का एक अत्यंत लघु रूप आप सबने देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपना ईश्वरीय विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। कर्म, ज्ञान, भक्ति का दिव्य संदेश जो गीता के रूप में लोगों को प्राप्त हुआ, उसमें भगवान श्री कृष्ण का यह कथन महत्वपूर्ण है।

0: हे अर्जुन, जो सदा संतुष्ट है, जो दृढ़ निश्चयी और योगी है, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तू मेरा भक्त बन, भक्ति को प्राप्त कर।
1: एक दिन सूरदास कहीं जा रहे थे।

हे कृष्ण कान्हा बंसी वाले, तुम तो बड़े नटखट हो, मुझ सूरदास को तुमने ही दर्शन नहीं दिए, ये नेत्र तो देख नहीं सकते, तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं होगे। मथुरा ब्रज गोकुल वृंदावन में भक्तों की भरमार है, मैं अज्ञानी तुम्हें कैसे पा सकता हूँ। हे मुरारी गिरधारी रक्षा करो, मुझ नेत्रहीन के परीक्षा मत लो, मैं अज्ञानी पापी हूँ, इस गड्ढे से नहीं निकल सकता, स्थान निर्जन है, किसी पच्चाप भी सुनाई नहीं दे रही है। हरी मेरी पीड़ा हरो, कान्हा मेरी रक्षा करो, विनय करता हूँ, मेरी विनती सुन लो,

0: बाहर आओ, आप गड्ढे से निकल नहीं पा रहे हो, आओ बाबा बाहर आओ, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल लूंगा। अब आप बाहर आ गए बाबा।
1: हे गिरधारी, हे मुरारी, हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे आप दिख रहे हैं। मोहनी मूरत, सांवली सूरत, मोर पंख बंसी वाले, मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ। हे कृष्ण, आप चले गए, मुझे छोड़ गए। ये क्या, मुझे गड्ढे से बाहर निकाल कर दिखाना बंद कर दिया? हाथ छुड़ा के आप चले जा रहे हो।

हाथ तो छुड़ा लिया भगवान, मैं निर्बल हूँ। आपको मैं बलवान तभी मानूंगा जब आप मेरे हृदय से निकलोगे। निकलो तो गिरधर।

0: हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए, तभी षड्रिपु दूर होकर तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी।
1: दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त था। उसे राज्य का लोभ था। लोभ, ईर्ष्या और दुख से ग्रस्त दुर्योधन भगवान कृष्ण के द्वारा पांडवों को मात्र 5 गांव देने की बात भी नहीं मानता। वह बिना युद्ध के सुई के बराबर भूमि भी पांडवों को ना देने की बात कहता है। वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है। समय समय पर अचानक अर्जुन जैसा संदेह और दुर्योधन जैसी ईर्ष्या सहसा जन्म लेती है, तब भगवान के वचन हमारी सहायता करते हैं और हमें राह दिखाते हैं। देखिए, एक 7वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम लेकर अपने घर में प्रवेश करती पद्मा को
2: माँ, किधर हो माँ?
3: हाँ पद्मा, विद्यालय से आ गई बेटी, परीक्षा परिणाम मिल गया?
2: माँ, प्रथम स्थान पुष्पा को मिला है। वह तो हमेशा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। मैंने उसे पढ़ने लिखने में कितनी सहायता की। वह गणित विषय में बहुत कमजोर थी। मैंने उसे गणित के सवाल हल करने का अभ्यास करवाया। माँ वह प्रथम आ गई। आज मैं उससे मिली नहीं। मेरे मन में उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है माँ।
3: पद्मा, तुम्हें पता है विद्यालय में पढ़ाई करते समय भगवान बाल सत्यसाई अपने सहपाठियों की कितनी सहायता करते थे। तुमने अपनी सहेली पुष्पा की पढ़ाई में सहायता कर अपना मित्र धर्म निभाया है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना ईश्वर का अधिकार है। तुम और पुष्पा प्रिय सहेलियां हो, दोनों बाल विकास की कक्षा में भी छात्राएं हो, इसलिए तुम्हें उसकी सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए।
2: माँ, मैं कल विद्यालय में पुष्पा से मिलकर उसे बधाई दूंगी। और माँ, मैं पुष्पा को हमेशा की तरह अपनी प्रिय सखी बनाए रखूंगी।
3: हाँ बेटी, तुमने

ठीक सोचा, ऐसा ही करना। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के वचनों का अनुकरण करना ही गीता का

0: प्रथम आने की तुम्हें बहुत बहुत बधाई।
1: पद्मा, यह स्थान वास्तव में तुम्हारा ही है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह असंभव था। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुमने स्वयं के स्थान पर मुझे पड़ा पड़ा कर यह स्थान दिलवा दिया।
0: तुम्हारी बातों ने मेरा हृदय छू लिया है। स्वामी भी तो कहते हैं, मार्क्स से अधिक त्रिमार्क्स की चिंता करो।
1: तुम कितनी अच्छी हो।
2: अब भगवान कृष्ण अर्जुन को हर जीव में दिव्यत्व का संदेश देते हैं।

0: पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्त्रों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देखो। जितने जीव जंतु संसार में हैं, उन सभी में मैं विद्यमान हूँ।
1: गंगोत्री से गंगा जल लेकर भक्त रामेश्वर जा रहे हैं। सभी भक्त नृत्य करते जा रहे हैं। तेज धूप है, तभी उन्हें रास्ते में एक गधा प्यास से तड़पता हुआ दिखा।

0: महाराज की जय हो। महाराज पधार रहे हैं।
1: महाराज की जय हो।
0: महाराज, हमारे राज्य के गुरुवर विद्वान श्री यज्ञदत्त शर्मा जी सर्वश्रेष्ठ गीता प्रवचन हेतु पधार चुके हैं।
2: द्वारपाल, उन्हें आदर समेत सभा में ले आइए। गुरुवर, प्रणाम स्वीकार करें। गुरुवर, आसन ग्रहण करें।
3: आयुष्मान भाव महाराज।
2: गुरुवर, आज गीता के किस अध्याय की व्याख्या पर आप हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं?
3: आज गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा होगी।

0: भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है उसका कुशल क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।
1: गुरुवर, संसार में तो लाखों करोड़ों मनुष्य हैं। भगवान कृष्ण प्रत्येक का कुशल क्षेम स्वयं कैसे वहन करते होंगे, क्यों मंत्री जी?
2: जी महाराज, भगवान कृष्ण किसी भक्त के माध्यम से ही कुशल क्षेम करवाते होंगे।
3: हाँ महाराज, यह सही है।
1: गुरुवर, हमें पुरानी व्याख्या में भगवान स्वयं करते हैं इसे काट देना चाहिए, और अपनी व्याख्या में भगवान कृष्ण कुशल क्षेम भक्तों के माध्यम से करवाते हैं लिखना चाहिए।
0: ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा।

0: दरवाजा खोल रही हूँ, धैर्य रखो।
1: प्रणाम माते।
0: आयुष्मान भव, किससे मिलना है वत्स?
1: गुरुवर यज्ञदत्त जी से।
0: वे तो राज्यसभा गए हैं पुत्र, कुछ कार्य था उनसे।
1: माते, ये फल और मिठाइयाँ रख लीजिए, उनके लिए लाया था।
0: अरे, ये तुम्हारे वक्षस्थल पर खून कैसे बह रहा है? किसी ने हमला किया है?
1: नहीं माँ, ये चोट पहुँचाई है।
0: किसने पुत्र?
1: आपके पति गुरुवर यज्ञदत्त शर्मा जी ने।
0: यह असंभव है पुत्र, वे बहुत शांत प्रकृति के हैं। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र?
1: माते, उनसे निवेदन करिए, मैं स्वयं उनके कुशल क्षेम हेतु आया था। व्याख्या सुधार लीजिए, मैं जा रहा हूँ, वे स्वयं ही समझ लेंगे।

0: अरे इतने फल मिठाइयाँ कहाँ से आ गए?
1: भद्र, ये एक युवक आपका नाम लेकर दे गया है।
0: उसका नाम क्या था?
1: उसने नाम नहीं बताया, किंतु उसके वक्ष पर रक्त स्राव हो रहा था। कह रहा था आपने चोट पहुंचाई है। यह भी कह रहा था आपसे बता दीजिए, मैं स्वयं कुशल क्षेम हेतु आया था, व्याख्या ठीक कर लीजिए।
0: ओ, राजन ने मुझसे व्याख्या कटवाई थी। हे कृष्ण, हे जनार्दन, मुझे क्षमा करें। आप स्वयं सभी भक्तों का कुशल क्षेम खुद वहन करते हैं।
2: और अंत में भगवान द्वारा दिए गए उद्बोधन को सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट होता है। भगवान कृष्ण के वचन से उसका संदेह दूर हो गया और वो संकल्प लेते हैं, करिष्ये वचनम तव।

हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। हे कृष्ण, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। हे भगवान, अब मैं संशय रहित हो गया हूँ। अतः करिष्ये वचनम तवा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आपके वचनों को सुनूंगा और उसका आचरण करूँगा। करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा।

ओम श्री साईराम। परम श्रद्धेय भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूं कि इस मंगल अवसर पर मैं भक्ति के कुछ स्वर पुष्प बाबा के चरणों में अर्पण कर रही हूं। सबसे पहले राग यमन में मैं मंगलदीप प्रज्वलित करती हूं। तू प्रेम का सागर बन जा, तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं, मैं मंगलदीप जलाऊं।

अब एक संत मीराबाई का भजन प्रस्तुत कर रही हूं। राणा ने विष का प्याला भेजा है मीरा के लिए और मीरा कहती है,